चिताब कलिंचिन कागो इते था साइलन बबे थे कसर था नगा तीन वां था चीने लोगो यो के बाई में थे नोगिन डा के गुरे नन उल्डन पार कागो यामी से सरका ले कलवेन डे को सिरे कोन्याय गल फोइशक मोटे चेना से सक मीट वाइफ सा इन कसर था न बा अरोय क्लच मीट इन था इन तकीन था के न बा कोगी मीट क्या में था के न बल्ला को तगा में तीन कसर था न बा सिगीशेत चौथन कलगो एक मन में निशान बाती ले लें दा आदेन डुआले नगम वाला वें देख बाई चेन सरकारी रबीनिक पिलों ने शिक्षक मोटे इन सिरे तन बाक कन्याएं चौथन गोगा यार और कले को गुंडे सरकारी नातन पर प्रेसिडेंट विलियम रोटो के बारे तन बाम मातने तराबीन के तिता बिलों ने शिक्षक मन वाइन के नुचा आइंग जगे गिमी तेन पाई चोनी के बावे न्योर चमेता के लाकुएता अगामेत